संग किया था मरायु पर गया मंगे बुरे हाथी की तसम हुआ डंगर इचू दिया सुवारा मरका ओ मरका तर सुवारा गंभीरा गीतर जुगा मंगे कुतर समा रगम रगु यां पर मैं बरगलूरा डंगर इचू दिया सुवारा मरका दिया का की तांगन